जैसा करै कहावै तैसा, ऐसी बनी जरूरत। होवै लिंग चिंग न होवै, ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है, अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया। सतगुर कै पाणे जो चलै, हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श में लायन फिर गर्भ ना गलिया, श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा, नौमी नेम सच जे करै, काम क्रोध तृष्णा उचरै। दसवीं दसे द्वार जे ठाकै, एकादशी एक कर जाणै। द्वादशी पंच वसगत कर राखै, तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजै। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र नाम विस है, बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछतै पछताया। जम दर बदे मारिए नानक हर पाया, श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावै गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरदना जाननी, मन अंधे उंधे कवल दिसन खरे करूप। एक कह जान कहया बुजन, ते नर सुर स्वरूप। एक ना नादना बेदना गी रस, रस कस ना जानंत। एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत। नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है, तन संपै माया। हर अर्थ जो खर्च दे, देंदे सुख पाया। जो हर नाम ते आए दे, तिन तोट ना आया। गुरमुखा नदरी आमदा, माया सुट पाया। नानक भगता होर चेतना आवई, हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन से वडभागी, सचै शब्द जिन्ना एक लिव लागी। ग्रह कुटाम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणत सेव न होवई, कीता थाए न पाए। शब्द साधना आयो, सच न लगो पाओ। सतगुर प्यारा न लगई, मन ठिया वह जाए। जे एक विख अगाह भरे, ता दस विखा पिछाह जाए। सतगुर की सेवा चाकरी, जे चलै सतगुर पाए। आप गवाए सतगुरु नो मिलै, सहजे रह समाए। नानक तिन्ना नाम ना विसरै, सच्चे मेल मिलाए। पौड़ी खान मलूक कहाए दे, को रहन ना पाई। गढ़ मंदिर गच गिरिया, किछ साथ ना जाई। सोयन साखत पौन वेग, त्रिग त्रिग चतराई। छत्ती अमृत प्रकार करै बो मैल वधाई। नानक जो देवै तिसे ना जाननी, मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, दे संतर पव थके पेख तारी। दूजे पाए ना कदे ना पाए, न दुख लागा अत पारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवै, माया कै ब्योहारी। अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़े गवारी। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन हमें विचों मारी। नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है, बुझे को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुकुम पया क्या कीजै।
ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਇਓ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਪੌੜੀ ਗੜਕਾਇਆ ਸਿੰਗਾਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਣਾਈ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਤੀਫਿਆ ਪੈਰੈ ਤਰਮਾਈ। ਲਾਲ ਸੁਪੇਦ ਦੁਲੀਚਿਆ ਬਹੁ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਦੁੱਖ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਗਰਬੈ ਗਰਬਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮਨਾ ਚੇਤਿਓ ਅੰਤਲੈ ਛਡਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸੁਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਈ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਦੁਬਦਾ ਚੁੱਕੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਜੇ ਭੰਨ ਕਢਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਹੁਣਿਆਣ ਮਿਲਾ।

जाओ। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवां, सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ। दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बंदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो एहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का रहाओ। आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखे रू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ। तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं, तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही। गुरमुख त्यावै से मृत पावै, सही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वर आण मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बुंद सुहानी ही रै, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार भई सुहागण, मंतन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मन मुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्म जन्म गवाया, मन पावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिनसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा, आत्म चीन तहां तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਉ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉਂ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉਂ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

तिसकी भूख दुख सब उतरै, जो हर गुण हर उचरै, जप मन हर हर हर निस्तरै, गुर के बचन कर न सुन त्यावै, पव सागर पार परै रहाओ। तिस जन के हम हट विहाजे, जिस हर हर कृपा करै, हर जन को मिलिया सुख पाईऐ, सब दुर्मत मैल हरै। हर जन को हर भूख लगानी, जन तृप्तै जा हर गुण बिचरै, हर का जन हर जल का मीना, हर बिसरत फूट मरै, जिन एह प्रीत लाई सो जानै, कह जानै जिस मन तरै, जन नानक हर देख सुख पावै, सब तन की भूख टरै। मलार महला चौथा, जितने जी जंत प्रभ कीने, ततने सरकार लिखावै, हर जन को हर दीन वडाई, हर जन हर कार लावै, सतगुरु हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौजल जगत तरावै रहाओ। जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावै, हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप तरावै, भरम भूले अज्ञानी अंधले, भ्रम भ्रम फूल तुरावै, निर्जियो पूजै मड़ा सिरेवै, सबरथी काल गवावै, ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहियै, हर हर कथा सुनावै, तिस गुर कहो शादन भोजन, पाठ पटंबर बहु बिद, सत कर मुख संचो, तिस पुन की फिर तोट ना आवै, सतगुर देओ परतख हर मूर्त, जो अमृत बचन सुनावै, नानक भाग भले तिस जन के, जो हर चरणी चितलावै। मलार महला चौथा, जिनकै हीयर बसियो मेरा, सतगुर ते संत भले पल भांत, तिन देखे मेरा मन बिकसै, हौं तिनकै सदबल जात, ज्ञानी हर बोलो दिन रात, तिन की तृष्णा भूख सब उतरी, जो गुरमत राम रस खांत रहाओ। हर के दास साध सखा जन, जिन मिलिया लह जाय प्रांत, ज्यों जल दुध भिन्न भिन्न काढ़ै, चुण हंसला त्यों देही ते चुण काढ़ै, साधु हौं मैं तात, जिन कै प्रीत नाहीं हर हिरदै, ते कपटी नर नित कपट कमात, तिन को क्या कोई देख वालै, ओए आप बीज आपे ही खांत, हर का चिहन सोई हर जन का, हर आपे जन्मै आप रखांत, तन तन गुरु नानक समदर्सी, जिन निंदा उस्तत तरी तरांत। मलार महला चौथा, आगमा गोचर नाम हरि उत्तम, हर कृपा तेज पलया, सत संगत साध पाई वडभागी, संग साधु पार पया, मेरा मन अन दिन आनंद भया, गुर प्रसाद नाम हर जपया, मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाओ। जिन हर गाया जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो कर मया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुख हों मैं रोग गया, जो वंदन हृदय नाम त्यावै, सब जन्म तिन्ना का सफल भया, ओए आप तरे सिरहिट सब तारी, सब कुल भी पार पया, तुद आपे आप पाया सब जग, तुद आपे वस कर लया, जन नानक कहो प्रभ कृपा तारी, बिख डुबदा काढ़ लया। मलार महला चौथा, गुरप्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाई, मनमुख मूड जलत हंकारी, हौं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिस ते उपजे

मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी, हर देखे जीवत है नानक, एक निमुख पलो मुख लागी, राग मलार महला पंजवा, चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नाम निध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा है दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्स प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते कागर नाव लंघै कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। सेव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चरण कमलन की तुमन डारो प्रभ करते। राग मलार महला पंजवा धुप दे कर पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी, हौ एक खिन तिस बिन रह ना सकौ, प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनके संग मोहे प्रभ चित आवै, संत प्रसाद मोहे जागी। सुन उपदेश भय मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। एहो मन दे किए संत मीता, कृपाल भय वडभागी। महासुख पाया वर्ण ना साकौ, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देह मिलाई, सगल सहेली सुख पर सूती जेह कर लाल बसाई रहाओ। मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला, मोहे निर्गुण क्या चितराई। करो बराबर जो प्रे संग राती, ए हमे की टीठाई। पई निमाणी सरन एकता की, गुर सतगुर पुरख सुखदाई। एक निमुख मैं मेरा शब्द काटिया, नानक सुख रहन बिहाई। मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ, बरस प्यारे मने सधारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ। हम तेरी धर स्वामिया मेरे, तू क्यों मनो बिसारे। स्त्री रूप चेरी की न्याई, सोभ नहीं बिन परतारे। बिनो सुनियो जब ठाकर मेरा, बेग आयो कृपा तारे। कहो नानक मेरो बनियो सुहागो,
पत सोभा पले आचारे मलार महला पंजवा। प्रीतम साचा नाम ते आए दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाओ। दुश्मन हते दुखी सब व्यापे हर शरण आई आया रख नहारै हाथ दे राखे ओ नाम पदार्थ पाया। कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्बल मन ली दिया। गुण निधान नानक मन वसिया बाहुड़ दुख न थिया। मलार महला पंजवा। प्रभ मेरो प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दी जय दयाला नगरो तारे रहाओ। सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पै करो बेनती मन दर्शन की प्यासा। बिशरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दी जय नामाधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय। मलार महला पंजवा। आबे अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई अदोत भयो पूर्ण भावी को भेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण ते आई। मलार महला पंजवा। कान हर बरस सगल जगशाया भय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ। मिटे कलेस तृष्ण सब पूजी पार ब्रह्मन त्याया साध संग जन मर निवारे बहुर न कथूं ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा। बिशरत क्यों जीवन ओए जीवन बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिल बेकी चरण कमल रस पीवन रहाओ। जिन कौ प्यास तुम्हारी प्रीतम तिन कौ अंतर नाही जिन कौ बिसरै मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही। मन तन रव रहया जगदीशर पेखत सदा हजूरे नानक रव रहे ओ सब अंतर सर्ब रहया पर पूरे। मलार महला पंजवा। हर कै भजन कौन कौन ना तारे खग तन मीर तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारे रहाओ। देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध महाबिखिया रस इनते पय निरारे दीन दयाल जपै करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा। आज मैं बैस्यो हर हाट नाम रास सांझी कर जन स्यो जाओ न जमकै काट रहाओ। तार अनुग्रहो पार ब्रह्म राखे ब्रह्म के खुले कपाट बेसुमार साहो प्रभ पाया लाह चरण निदखाट। शरण गही अचत बनासी किलविख काढ़े है शांट कल कलेस मिटे दास नानक बहुरना जोनी माट। मलार महला पंजवा। बहुबिद माया मोहे हैरानो कोट मदे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो रहाओ। इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानो लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो कहो नानक पाहन प्रभ तारो साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा। दुष्ट मोए बिख खाई री माई जिसके जी तिन ही रख लीने मेरे प्रभ को कृपा आई रहाओ। अंतर जामी सब मैं वरतै तापो कैसा पाई
संग सहाई छोड़ ना जाई, प्रभु दिसै सबनी ठाई। अनाथा नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जी वह दास तेरे, नानक प्रभ शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्स प्यास मेरो मन मोहयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनुग्रहो स्वामी मेरे, नाम हरस पीजै। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल तो कृपा की जय, कर गए ले हो दास अपने को, नानक अपनो की जय। मलार महला पंजवा, प्रभु को भगत वचन बिरदायो, निंद कुमार चरण तल दीने, अपने जस वरतायो रहाओ। जय जयकार कीनो सब जग मैं, दया जियन मैं पायो, कंठ लाए अपने दास राखियो, ताती वाओ न लायो। अंगीकार कियो मेरे स्वामी, ब्रह्म पाओ मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरमुख दिसै ब्रह्म पसार, गुरमुख त्रै गुणिया बिस्थार, गुरमुख नाद बेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है, गुर उपदेश हर विसर हर हृदय वस्यो, सास ग्रास अपना खसम त्याई है रहाओ। गुर के चरण में टोंबल जाओ, गुर के गुण अंदनित गाओ, गुर की धूड़ करो शनान, साची दरगह पाईए मान। गुर बोहित पवजल तारन हार, गुर पेटिया ना होए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जा कहो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई, नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई। मलार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभया मिलाए, अपने सेवको ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कही ना जाए। कर कृपा पूर्ण सुखदाते, तुमरी कृपा ते तू चित आवै, आठ पहरो तेरा रंग राते रहाओ। गावन सुन सब तेरा पहाना, हुकम बूझै सो साज समाणा, जब जब जीवै तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ। दुख सो करते हुक्म रजाए, पाणे बख्स पाणे दे सजाए, दुहा सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझै सुने आप वखाने। सेई भगत जो तुद पाणे, नानक तिन कै सद कुर्बाने। मलार महला पंजवा, परमेश्वर होवा दयाल, मेघ वरसै अमृत तार, सगले जी जंत त्रिपतासे, कार्य आए पूरे रासे। सदा सदा मन नाम संभाल, गुर पूरे की सेवा पाया, ऐथै उथै निभै नाल रहाओ। दुख पन्ना पै पंजन हार, अपने जिया की कीती सार, राखण हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करतै आप, सदा सदा मन तिसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप, हर के भक्त जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोलै तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगह पाईए मान। ब्रह्म पाओ दुख दर्द सब जाए, सा संग सद हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा सा लाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चंदे फल पाए रहाओ। सतगुर जेवड़िया वरना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए। जन्म मरण दुख ते राखै, माया बिख फिर बहुन ना चाखै।
गुर की महिमा कथन ना जाए, गुर परमेश्वर सच है नाए। सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग राची। गुर पूरा पाइए वडभाग, काम क्रोध लो मन ते त्याग। कर कृपा गुर चरण निवासे, कर कृपा गुर चरण निवास। नानक की प्रभ सच अरदास, राग मलार महला पंजवा। पड़ताल करती जाए को अंकार, सतगुर प्रसाद। गुर मनार प्रे दयार, स्यों रंग किया किनोरी सगल सिंगार। तजोरी सगल बेकार, ताप तो अस्थिर थिया रहाओ। ऐसे रे मन पाए कै, आप गवाए कै। कर साधन स्यों संग, बाजे बजे मृदंग। अनाहद को कलरी, राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया। ऐसी तेरे दर्शन की सोब, आत्या पार प्रया मोग। तैसे ही संग संत बने, पाव उतार नाम पने। राम राम राम माल, मन फेरते हर संग संगिया। जन नानक प्रियो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवा, मन कने प्रमे बने। उमकत रस चाले, प्रम मिलबे की चाह रहाओ। त्रै गुण माई मोह आई, कहो बेदन काहे। आने उपाव सगर किए, न दुख सा कैलाहे। पज सरन साधु नानक।

आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर घट घट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जाके पावनी निकी। मलार महला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हरे दे अंतर तारे। रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसम बिसम पई अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण दुआरे। मलार महला पंजवां बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ तर सुहाग। कन कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवां गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत। रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग। हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म भय दयाल बिनस गए बिखै जंजाल। साध जना कै चरण लाग नानक गावै गोविंद नीत। मलार महला पंजवां कन गरजत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन। रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन। हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवां हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। रहाओ प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहै बिन पिर नींद ना पाई। सूर चरै प्रयो देखै नैनी निम निम लागै पाई। फिर पावै प्रेम सिखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई। रहाओ सरवर कमल किरण आकाशी बिकसै सह सुभाई। प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरै बिलप करे बिल लाई। कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई। खिन तिल रह न सकै पल जन बिन मरण जीवन तिस ताई। तन वांडी पिर देश निवासी सचे गुर पै शब्द पठाई। गुण संग्रह प्रभृदय निवासी भगत रति हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती गुर पावै प्रयो पाई। प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। सब मैं जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई। गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही। अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच ढर पाही। इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिनस्त बार न लागे बवरे। हम मैं गर्भ खपै जग ऐसा। रहाओ जय जगदीश प्रभु रखवारे राखै परखै सोई। जेती है तेती तुझ ही ते तुम सरे वर ना कोई।
ਜੀਉ ਪਾਏ ਜੁਗਤ ਹੱਥ ਕੀਨੀ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਜਨ ਅਮਰ ਅਨਾਥ ਸਰਬ ਸਿਰ ਮੋਰਾ ਕਾਲ ਬੇਕਾਲ ਭਰਮ ਪੈ ਖੰਜਨ ਕਾਗਦ ਕੋਟ ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਬਪਰੋ ਰੰਗਨ ਚਿਹਨ ਚਿਤਰਾਈ ਨਾਨੀ ਸੀ ਬੂੰਦ ਪਵਨ ਪਤ ਖੋਵੈ ਜਨ ਮਰੈ ਖਿਨ ਤਾਈ ਨਦੀ ਉਪਕੰਠ ਜੈਸੇ ਘਰ ਤਰਵਰ ਸਰਪਨ ਘਰ ਘਰ ਮਾਹੀ ਉਲਟੀ ਨਦੀ ਕਹਾਂ ਘਰ ਤਰਵਰ ਸਰਪਨ ਡਸੈ ਦੂਜਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਗਾਰੜ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਚਨੀ ਬਿਖਿਆ ਗੁਰਮਤ ਜਾਰੀ ਮਨ ਤਨ ਹੇਮ ਪਏ ਸਚ ਪਾਇਆ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਿਰਾਰੀ ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧ ਜਾਚੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦਿਆਲਾ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪਰੇ ਪਤ ਰਾਖੋ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲਾ ਬਾਂਦੀ ਤੰਦ ਅੰਧ ਨਹੀਂ ਸੂਜੈ ਬਦਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੂਜਿਸ ਬੂਜਿਸ ਸਚ ਮਨ ਗਿਆਨ ਸਮਾਵੈ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇਹੇ ਸਾਚ ਬਿਨ ਸਾਚੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇਹੇ ਸਾਚ ਬਿਨ ਕਾਚੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਤਰ ਕਮੀਨ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ ਰੈਨ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰੇ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੋਤੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਨੀਂਦ ਗਈ ਹਉ ਮੈਂ ਤਨ ਥਾਕੀ ਸੱਚ ਮਤ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਈ ਰੁਖੀ ਬਿਰਖੀ ਉਡੋ ਭੁੱਖਾ ਪੀਵਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਈ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਲਤਾ ਬਿਲਲਾਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆ ਸਿਰਜਾਈ ਪ੍ਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਤੇਤਾ ਤਨ ਤਾਪੈ ਕਾਪਰੇ ਅੰਗ ਨਾ ਸੁਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਇੱਕ ਖਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਉ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ ਪਿਰ ਨਜੀਕ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬੱਪੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੁਈ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਖਲੀ

रहाओ सतगुर सबदी पादर जान गुर कह तकिए सच ऐतान नाम समाल सरूड़ी बाण थै पावे दरले स्पिराण ऊंडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना उची तार निज करवासा तह मगना चल नहार जित कर वसै तू है बिद जाने बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दग ब्याशा पै करण पलाव करै बिल लातो बिन गुर नाम ना जापै पल पंकज मैं नाम छड़ाए जे गुर शब्द सिंपै एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मुख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी इंद वरसै तरत सुहावी कट कट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे बांधा कार कमाए एक शब्द रचै सच समाए चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं जामन मरना दिसै सिर उबो खुदया निंद्रा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जानै कंठे बैठी गुर शब्द पछानै तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जा चैर दै समाल रहाओ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्व जी किए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत पारी ऊंडना सांकै पंख पसारी रस चूगै मन मुख गावार फाती छूटै गुण ज्ञान विचार सतगुर सेव टूटै जमकाल हृदय साचा शब्द संभाल गुरमत साची शब्द है सार हर का नाम रखै उरतार से दुख आगै।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे हर जप जपे, जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जप है ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मिल पज राम, बढ़ हो पाग मथाम रहाओ। जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम। सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम। कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईऐ हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझै आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट। कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ। बिख माया संच बहु चित बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यों शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमती सुधादो, ज्यों काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरह कुर सगल तरादो। कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ। तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्त करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनकै हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक।

मान मोह त्याग छोड़ लियो तो नानक हर जियो भेटना कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख हर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खा टंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठ निगरह अत रहत बिटंगा हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ जैसी करी प्रभु मोसियो ऐसी हों कैसे कराऊं हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रभ थान थे रोके हरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलियो जो भाव तो जन नानक ठाकर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा महला पंजवां कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागी है गुमान मान पेखता दयाल लाल हां हां मन चरण रेन रहाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान हृदय गोबिंद गाए चरण कमल प्रीत लाए दीन दयाल मोहना कृपाल दया मया तार नानक मांगे नाम दान तज मोह परम सगल अभमान कानड़ा महला पंजवां प्रभ कहन मलन दहन लहन गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ तटन खटन जटन होमन नाही डंड धार सुवाओ जतन पांतन तपन भ्रमन अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ कानड़ा महला पंजवां करनावां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पावन भगत पवछल पै हरन तारन तरन रहाओ नैन तिबते दर्श पेख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोबिंद सरन आस पूर्ण दुख बिनासन गही ओट नानक हर चरण कानड़ा महला पंजवां चरण सरण दयाल ठाकर आन नाही जाए पतत पावन बिरद स्वामी उधर ते हर त्याए रहाओ संसार गार बेकार सागर पतत मोह मान अंध बिकल माया संग तंद कर गह प्रभ आप काढ़ो राख लियो गोबिंद राए अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप विनाश मन दर्शने की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाए कानड़ा महला पंजवां वार वारो अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इन स्यों तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात कानड़ा महला पंजवां अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ गृह से सुहावी आंगन चैना तोरो री तोरो पंच दूतन स्यों संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिगसोरो छुटकी हम मैं सोरो गायो री गायो प्रभ नानक गुनी गहेरो कानड़ा महला पंजवां करनावा ता ते जाप मना हर जाप जो संत बेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंताप रहाओ जो राते माते संग बपरी माया मोह

ताप नाम जपत सौ जन उदरै जिसे उधारो आप बिनस जाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप कानड़ा महला पंजवा कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो दान देहो जी संतो जात जियो बलिहार मान मोही पंच दोखी उर्ज निकट बसेओ ताकी सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन प्रमेओ हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार दुलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवा कर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहे सुभाए अपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ संयोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करै बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोलै चरण लुभाए अंत जाए थान थनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकर मिलन दुराई परमित रूपा गामा गोचर रहो सर्व समाई रहाओ कहन पवन नाही पायो पायो अनक उकत चतराई जतन जतन अनक यो पावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपाल कृपा निद जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम प्रभ बिना नाही होर चितवो चरनार बिंद सासन निस्पोर रहाओ लाए प्रीत कीन अपन टूटत नहीं जोर प्राण मन तन सर्व सो हर गुण दे सुख मोर ईत ऊत राम पूर्ण निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिरस्यो दुख कोर कानड़ा महला पंजवा जन को प्रभ संगे असने हो साजनो तू मीत मेरा गृह तेरे सब के हो रहाओ मान मांगो तान मांगो तन लक्ष्मी सुत देह मुकत जुगत भुगत पूर्ण परमानंद परम निधान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च अहं चरी करत करत चर्च चर्च चरचरी जोग ध्यान पेख ज्ञान फिरत फिरत तरत तरत तरचरी रहाओ अहं अहं अह अवर मूड मूड मूड बवरई जत जात जात जात सदा सदा सदा काल है मान मान मान त्याग मृत मृत निकट निकट सदा है हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावै गो ज्यों ज्यों जपै त्वै सुख पावै सतगुर सेव समावै गो रहाओ भगत जना की खिन खिन लोचा नाम जपत सुख पावै गो अनरस साध गए सब निकर बिन नामै किश ना सुखावै गो गुरमत हर हर मीठा लागा गुर मीठे बजन कढ़ावै गो सतगुर बाणी पुरख पुरखोत्तम बाणी स्यो चितलावै गो गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज करे।

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प्या रापो कोई मिले प्रभु मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभु तुमरे, जन नानक के प्रभु समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम त्यावे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम भज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तै राखे नाम साथई। जन तेरा जस गावे हर हर, प्रभ हर जप्यो जगंग नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुड़ थई, कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहया एक तल नहीं मान रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अचुत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है, हर सेवा ते काल जोहे ना सके, चरणी आए पवे हर जान, जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान, ता कौ कोई अपर ना सके, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चो जो विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान, ताते जन को आनंद भया है, रिद सुध मिले खोटे पछतान, तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान, जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मुहे हर चरान, कल्याण महला चौथा। प्रभ की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुक्त एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बिगार जगत पित पावेंगे, जो हर स्वामी तुम दे हो सोई हम पावेंगे, मोहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे, शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण, सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मणे रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे, ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे, जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावनित पार परे, भगत जना की पैज हर राखे, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारा एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यों, मन फेर फेर दी जय रहाओ। आन जला स्यों काज ना कछुऐ, हर बूंद चात्रक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा, पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचै जाचै, सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगे, पावनिया सो पाइय, सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाइय, नानक तत तत स्यो मिलिय, हीरे हीर बिधाइय। कल्याण महला पंजवा,
मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख नागै सगल जपै तिरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे मान हर हर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ ईत योत दह दिस रवेओ मेरत ने समान जत कथा तत पेखी है हर पुरख पत प्रधान साध संग प्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा गुण नाद तोनिया नंद बेद कथत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाओ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत तै पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत् बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कशु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा कौन बेता की कहां करो तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर्शन परो काहू पै राज काहू पै सुरगा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई है साधु चरण कहो। कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे रहाओ नाम तारी शरण तेरी प्रभ दयाल टेक मेरी अनाथ दीन आसवंत नाम स्वामी मनै मंत तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू सर्व जुग मैं तुम पछानू हर मन बसे निस बसरो गोबिंद नानक आसरो। कल्याण महला पंजवा मंत्र जापिए भगवान गुर पूरे सो प्रसन्न पए सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध पए गाए गुण गोपाल मेर साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुखकाल कर कृपा प्रभ मेरे आ करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव। कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेसर निहचल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आना कोई समर्थ तेरी आस तेरा मंतान सर्व कटा के दाते स्वामी देह सो पहरन खान सुरत मत चतराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण। कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपन संग जमकाल तिस ना खावनो मुक्त जुगत अनक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो। कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा रम रामो सुन मन पीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाओ काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर मत संजम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सवाई तत गुरमत काढ़ लई जै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुई जै कृपा कृपा कृपा कर प्यारे गुरसबदी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सबदा हर रस की जै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा ली जै सतगुर आगम अगम है ठाकर पर सागर भगत करी जै कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख

रस रसक घटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन करत रीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर यत फीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भुयंगम वेड़ी, के मिलिय चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद शेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करीजै। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लूकी दीजै। साधु साधु साध जनि के, जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जनी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिन सिरन की, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

आवत किनै न राख्या जावत क्यों राख्या जाए, जिस ते होवा सोई पर जाने जा उसी माए समाए। तू है वाहो तेरी रिजाए, जो किश करे सोई पर होए बा अवर न करना जाए रहाओ। जैसे हर हटकी माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है। तैसो ही ओ खेल खसम का ज्यों उसकी वडियाई, सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नजर परगासी। मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी। जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रया निर्वाण, जिस ते होवा सोई कर मान्या नानक गिरही उदासी सो प्रवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हों तिसकै बल जाई। पापुन की सार न जाने भूला फिरै अजाई। बोलो सच नाम करतार, फुन बहुन न आवन वार रहाओ। ऊंचा ते फुन नीच करत है, नीच करै सुल्तान। जिन्नी जान सो जानिया जग ते पूरे प्रवान। ता कौ समझावन जाइए, जे को पूला होई आपे खेल करे सब करता है, साबू जै कोई। नाव प्रभातै सब त्याई है, छोडो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला, मन माया मन ताया, मन पंखी आकाश। तस्कर शब्द निवारिया, नगर उठा साबास। जां तू राख राख लै सब तो हो वैरास। ऐसा नाम रतन निध मेरा, गुरमत देहे लगो पग तेरा रहाओ। मन जोगी मन पोगिया, मन मूर्ख गावार। मन दाता मन मंगता, मन सिर गुर करतार। पंचमार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार, घट घट एक वखाणी है कहो ना देखिया जाए। खोटो पुठो राली है बिना मैं पत जाए, जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए। जात जन्म ने पूछिए सच कर लिहो बताए।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिलै वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

पाले हम गुर राख लिए कृपाले काम क्रोध से ठाठ ना बनया गुर उपदेश मोहे कानी सुनया जै देखो तै महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाए हम गुर राखे हर लिव लाए अहम मेव स्यो मसलत छोडी गुर कया एह मूर्ख होडी एह नींगर कर कही ना पाए हम गुर राख लिए लिव लाए इन लोगन स्यो हम पहे बैराई ए ग्रह मैं दोए ना खटाई आए प्रभ पहे अंचर लाग करो तपावस प्रभ सरबाग प्रभ हस बोले किए न्याय सगल दूत मेरी सेवा लाए तू ठाकर एहो ग्रहो सब तेरा कहो नान गुर किया नबेरा प्रभाती महला पंजवा मन मैं क्रोध महाहंकारा पूजा करे बहुत विस्थारा कर इशनान तर चक्कर बनाए अंतर की मल कभी ना जाए इत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुंद्रा मन मोहया माया रहाओ पाप करहै पंचा के बसरे तीर्थ नाए कहें सब उत्तरे बहुर कमावे होए निसंक जम पर बांध खरे कालंक कुंगर बांध बजावे ताला अंतर कपट फिरे बेताला वर्मी मारी साप न मुआ प्रभ सबके जाने जिंतु किया पूवर ताप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया गृह ते नस्ता देश छोड़ पर देसैताया पंच चंडाल नाले ले आया कान फराए हराए टूका कर कर मांगे त्रिपतावन ते चूका बनता छोड़ बद नदर पर नारी वेसना पाई है महा दुखियारी बोले नाही होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी अन्न ते रहता दुख देही सहता हुक्म ना बूझे व्यापया ममता बिन सतगुर करे ना पाई परम गते पूछो सगल बेद सिमरते मन मुख कर्म करे आ जाई ज्यो बालू कर ठौर ना ठाई जिसनो पहे गोबिंद दयाला गुर का बचनो तिन बांध्यो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिन कै संग तराया जे होवै भाग तां दर्शन पाई है आप तरै सब कुटुंब तराई है रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिक सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मिलहर रस पाया पार ब्रह्म रिदमाए समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाया रहाओ चूका गौण मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुग द्वार हर प्रेम भगत मन तन सद राता प्रभु जनाया तभी जाता घट घट यंत्र रव्या सोए तस्मिन बीजो नाही कोए बेर बैर विरोध शेदे पै परमा प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा महातरंग ते कांडै लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संजम नाम संभालिया अपने ठाकर नदर निहालिया मंगल सुख कल्याण तिथाई जै सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो प्रसन्न पहे गोपाल जन्म जन्म के मिटे बेताल होम जग उर्दता पूजा कोट तीर्थ इशनान करी जा चरण कमल निमख हृदय तारे गोविंद जपत सब कार्य सारे ऊचे ते ऊचा प्रभ थान हर जन पावे सहित ध्यान दास दास की बांछो तूर सर्व कला

सर्व निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बिखू बन बिखे वास्ते सुख लागला सर्वे आद परमलाद काहट चंदन पैलै। तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचन पैला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जाने कोई तै मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभे ओ आप ही करता बीठल दे ओ। जी का बंधन कर्म व्यापै जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ इहो जियो चितवै सो लहै अमर होए सद आकुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती हृदयंतर कर तलकाती ठग दिष्ट बगा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद च राम क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग रहाओ। नित प्रत इशनान श्रीरंग दोय धोती कर्म मुख खीरंग हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजसो चक्र गणेशंग निस जागत निस जागस भगत परवेशंग। पग नाचस चित अकर्मंग एलंपट नाच धर्मंग। मृग आसन तुलसी माला कर उज्जल तिलक कपाला। हृदय कूड़ कंठ रुद्राखंग रे लंपट कृष्ण अपाखंग। जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोगट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नवा राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान। बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा राम भज जन्म सिरात है। कहो कहां बार बार समझत न क्यों गवार। बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे। अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार। नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा रे मन कौन गत होए है तेरी। एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बिख्यान सिंह अत लुभान मत नान फेरी रहाओ। मानस को जन्म लीन सिमरन न निमख कीन। दारा सुख पयो दीन पगहो परी बेरी। नानक जन कह पुकार सुपने ज्यों जग पसार। सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी। जय जावंती महला नावा। बीत जह बीत जह जन्म अकाज रे। निस दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान। काल तौ पहुंचो आन कहां जह पाज रे रहाओ। अस्थिर जो मान

हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा।

राम स्नेही तो मिलै दोनों वर्ण गवाए। कबीर हरदीपी रतन हरै चून चहन ना रहाए। बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वर्ण कुल जाए। कबीर मुक्त दो

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पे निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै रात जगावन जाए, सरपन होए कै उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै अहोई राखै नार, गदही होए कै उतरे पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जामो कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जह जेवरी तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैनाह, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाह। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कहे कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया।

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो साल आही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औद पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की लेगो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारे मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबै रथा तल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले सजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बुझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो गृहो करे ता धर्म कर,

स्वये श्री मुखबाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अब

विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार, एक जिही क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार, परै ही ते परै अपरे अपार पार, आपनो पावन कार मंत्र ना दूसरो तार, ओपत परलो एक है निमख तो कार, आन नाही संसार उजियारो निर्मर, कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार, एक जिह क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे एक थे किए विस्थारे, पूर रहो सर मैं आप है निरारे, हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार, एक जिही क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं, मन तन तेरो प्राणं एकै सूत है जहानं, कौन उपमा देओ बड़े ते बड़ानं, जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ, अकल कला है प्रभ सर्व को तान, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार, एक जिही क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी, हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी, गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी, जा कह होहे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जन परसयो, से जन मरण दो थे रहो, सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिय, दूसरे अन्न अवर पुरख पौरातन सुनिया, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जेहे रसन चाखेओ तेह जन तृप्तिया गाए, जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सत्संग ते प्यार, हर गुरु नानक जन परसयो तिन सब कुल कियो उधार, सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरयो, सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो, सच सिरजियो संसार आपिया पुल ना पुल्लो, रतन नाम अपार कीम न पवै अमुल्लो, जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हू पाए, हर गुरु नानक जन परसयो ते बौड़ फिर जो ना आए, कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिय, सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिय, ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत ना पाए, अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हर गुरु नानक जन परसयो ते इत्युत सदा मुक्ते, प्रभ दाताओ दातार परयो जाच के कसरना, मिले दान संतरेन जेह लग पौ जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावे, देहो दर्श मन चाओ भगत्यो मन ठहरावे, बलियो चिराग अंधियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म, सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी, तावत परमत रहन नहीं।

दर्शन ब्रह्मादिक स्मरंथ गुना गावे गुण शेष सहस जे बारस आदि अंत लिव लाग तो ना गावे गुण महादेव बहरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज योग तय मान्यो राज योग तय मान्यो छल्यो राज योग तय मान्यो बस्यो निर्वैर निरंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे संकाद आदि जन का जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सक्यथ भलो जग पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल वखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज योग तय मान्यो सतयुग तय मान्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तय मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन कौ राज अपह भगतै जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल टल आदि पुरख फुरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवै सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देव परीक्षित गुण रवै गोतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो गुण गावे पयाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवै सदा योगी जत जंगम गुण गावे मन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुक्म सब सृट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जब कल सुजस नानक गुर सहजोग जिन माण्यो गुण गावे नवनाथ तन गुर साज समायो मां दाता गुण रवै जिन चक्र वै कहायो गुण गावे बलराओ सबत पाताल बसंतो भर थर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूरबा पुरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कटकट सहि समायो सवैये महल्ले दूजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समरथो सतगुरु तन नानक मस्तक तुम तरयो जिन हथो ता तरयो मस्तक हथ सहज आम्यो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहि अगाज मार्यो कंटक काल गर्ज तावत लियो बर्ज पंचपूत एक कर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खेले समतसार रथ उन मानो लेव राख निरंकार कहो कीर्त काल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत रघुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत तार कालख खन उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवै शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर पव उतार किए निरपार सत संगत सहज सार जागी ले गुर बीचार निमरी पूत सदीव परम प्यार कहो कीर्त कल सहार सबदी मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार तै तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सुजान जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगत्र जल पद्म विचार कल्पतर रोग बेदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिविद तेरा एक लिवतार कहो

वर्ष एक हों फिर ओ किने नो पर चौल आयो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तै दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूरजन की आसा सतगुर से परम पद पायो अबनासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जा को फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अनपव उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सीरस नहो फुटै सतगुर प्रमाण बिदन सिरयो जग जस्तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध नाम निधान रिद सिद्ध ता की दासी सह सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो बनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तैं जगत उदाहरण पायो
जगतो धारण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख

जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बख्याता अहनिस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देख तिर जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म करम पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सोआ पार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राजयोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसे तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रि पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै पाहण माणक करै ज्ञान गुर कहो विचार काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए जाम गुरु है वल तने क्या गर्व दिजय जाम गुरु है वल लख बाहे क्या किजय जाम गुरु है वल ज्ञान अर ध्यान अनन पार जाम गुरु है वल शब्द साखी सो सच्चै कार जो गुरु गुरु अहनस जप दास पट बेनत कह जो गुरु नाम रिद मैं तरै सो जन्म मरण दो थेरै गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अग्न कटै सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखियो नहो कियो ते अक्यत संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाद शब्द जिसके रे फुन दुख नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसत तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पी उस पे वन की बंछत सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो रस बासन से ओ जो दहंग दिस्तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो
समरथ गुरु सिरहथ तरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो, निसबासर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत पान डरियो, पन दास सुवास जगतर गुरु की, पारस पेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिरहथ तरियो, अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाक सफारे करे आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्त्र दीन बहु साज, सो दामा अपदा ते राखिया, गनका पड़त पूरे तह काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कलयुग होए, राखो दास पाठ की लाज, झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया, शब्द हर हर जपै नाम नाम निद अपै, रसन अहनस रसै सत कर जानिया, फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है ते आई है, अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानिया, बचन गुर रिद तरो पंच पू बस करो, जन्म कुल उधरो द्वार हर मानिया, जाओ ता सब सुख इत उत तुम बंछवो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, अगम गुण जान निदान हर मंत्रो त्यान, अहनिस करो बचन गुर दे तर, फुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करो, संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर, सदा निर्वैर निरंकार निरपौ जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर, मुग्ध मन प्रमत जाओ नाम।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीरपण। तिनको अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै। सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड़ियो पास ताते गौ हर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ मान तुमली अगर प्रगट सुवास। ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जे पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुरु रामदास कहो मिली बढ़ाई। हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै पव सागर बंदेओ सिख तारे सो प्रसन्न। सिर आत पात

नाम अमृत मुख लियो गुरे अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरियो सो कमन कह श्री गुरमोयो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो। रह सकियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नर होके गुर रामदास जिन पायो शतर सिंहासन पिर।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससर सुइया किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पीटहदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत्स ज्ञान कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछत रन कल ताहू खरे सुजान वन्याए नी कपरी चढ़ चकड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नाहे पाओ नारक दुनिया कैसी होई साल को मित ना रहे हो कोई पाई बंदी हे चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया है करके हो करे न गल्ला पिटन सिर खोहे न नाव लैन यार करन समाए नानक त्रिबल हारे जाए रे मंडी गना डोली है सीधे मार्ग ताओ पाछे बग डरावनो आगे अगंत लाओ सह सह जियरा पर रहे ओ मां को यवर ना टंग नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यों संग बाग मरे मन मारी है जे सतगुर दिख्या होए आप पछाण हर मिले बहु न मरना होए कीचड़ हाथ ना बुढ़ई एक नजर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अगन मरे जल लोड़ लहो विण गुर ने जल नाहे जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चल सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल लाए मन तन मैला अवगुणी चिंज परी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग को पंखी संग साग स्यो ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुरथ तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत ना पाओ पैंदा खांदा बाद है जा मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा या लाओ नानक नाम सलाहे तू हो रहा आओ जाओ हैन विरले नाही कणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तोर मर है जीवन नाही तान छोटा से ती जो मर है लगी सा प्रवान जिसन लाए ते

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यान स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर मना।

सदा बस्त तुम साथ। तन तन जे तो कौ दियो तां स्यो नेहो ना कीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जे नीके ताम। कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत्व

कट कट में हर जू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना

कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना तह कट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी करता राम पशान, कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजहो करण सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार, कहो नानक अपन तरै और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन मैं नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा उपजै बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले है, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही मूर्ख लोग या जान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोबिंद नाम, कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों शाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन। जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजित नहीं नित। नानक एह बिदहर पायो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान। नानक ने फल जात तह जो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मग नैन ज्योत ते हीन। कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे।
जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत कह नानक।

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिनस है, परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत में, टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जा के सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंच महर्ख दिशाक सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशकिया लाप संग रागनी पंचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनाशरी ए पंचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उबारा खौ खटियौ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचना

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमर है कर रावण दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देग।

0: राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोए, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवीऐ, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोह है पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान

मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे।

अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापार ये अमूल भंडार, अमूल आवहे अमूल ले जाहे, अमूल पाए अमूला समाहे, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल प्रवान, अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फुरमान, अमूलो

गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सुवारे, गावह इंदासन बैठे, देवत्यां दरनाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ नरखी सरे,

पधारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जोग जोग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग माछ पयाले, गावन

विश्वास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित बहे उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्र

जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी तिनका पहो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे।

तेरी अनक तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड अवर ना कोई, तू जोग

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोई। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

अस्मेयं जिन एहो जगत उपाया त्रिभवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मन मुख मुग्ध गुबार घट कर ज्योत निरंतरी।

जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाउ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए शंख उतार, मोया जित कर जाइए तित जीम दया मर मार। अनहद शब्द सुहावणी।

जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो भाव जल पचाए पचाए यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदलै जाए जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भाव जल लंघी।

क्यों बुझे जान है बुझाई, आखन सुनना पौन की बाणी। इहु मन रत्ता माया, खसम की नजर दिल है पिसंदे, खसम की नजर दिल है पिसंदे, खसम की नजर।

नाम निदान अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार हों तिन कै बलिहार ने जिन्ना नामे लगा प्यार से सुखिये चौ जुगी जिन्ना नाम अखुट अपार गुर मिलिया नाम पाईए चूकै मोह प्यास हर से ती मन रब रहया कर ही माहे उदास जिन्ना हर का साध आया हों तिन बलिहार जास नानक नदरी पाईए सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बहु पेख कर परमाईए मन हृदय कपट कमाए हर का महल न पावई मर विष्टा माहे समाए मन रे ग्रह ही माहे उदास सत संजम करणी सो करे गुरमुख होए परगास रहाव गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याईए सत्संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करहें नवखंड राज कमाहें।

सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना विछड़े तिन निज कर वासा होए मेरे राम मैं हर दिन अवर न कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा होए रहाव शब्द मिले सो मिल रहे।

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबराए, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पैके ही लाग श्री राग महला तीजा घर ही सौदा पाई आए अंतर सब वथ होए खिन खिन नाम संभाली आए गुरमुख पावे कोए नाम निदान अखोट है वड़ पा।

रहा सहजे खेती राही है सच नाम बीज पाए खेती जम्मी अगली मनवा रज्जा सहज सुभाए गुर का शब्द अमृत है।

मोह अभिमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त न पाई मन मुख फिर दीवान शब्द न चीन कथनी बदनी करे विख्या माहे समान।

न्याय सतगुरु वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड़ भागी बड़ जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए इहो हर रस वण तिन सबत है।

जिन्ना सतगुरु स्यों चित लाया से पूरे प्रधान। जिन कौ आप दयाल होए तिन उपजय मन ज्ञान। जिन कौ मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखां सुख।

पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ विनसया तजया सब अभिमान।

आप होवा मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुण सार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह।

प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बिखसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सिउ मरै ना आवै जाय ना वे छोड़िया बिछड़े सब मह

रूप अपार, सखा सहाई अत वड्डा, ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरद ना जानिया, निहचल तिस दरबार, जो मंगिया सोई पाई, निधारा आधार। जिस पेखत किल विख रहै, मन तन हो वह शांत, एक मन एक त्याई है, मन की लाहे प्रांत। गुण निदान नव तन सदा, पूर्ण जाकी दात, सदा सदा आराध्य है, दिन विसरहो नहीं रात। जिनका पूर्व लिखिया, तिनका सखा गोविंद, तान मान तहन अर्पी सबो, सगल वारी है ए जिंद। देखै सुनै हदूर साध, घट घट ब्रह्म रविंद, अकिरत कणा नू पालदा, प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीर्थ वर्थ लक।

थान थनंतर रव रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वड भागी तन खात संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत रतन

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखे

राज नरिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

गुड़ जेवड़ अवर न कोय, दूजा थाओ न को सुजै, गुड़ मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड पागी माए। गुर दाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे, जिन गुर तारिया हाथ, गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पाथ। गुर परमेश्वर सेविया, पै भंजन दुख लथ, सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागे डंड, गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड, श्री राग महला पंजवां।

दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना सच छड़ जासी लख करोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख

पंजवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसहत्या बहु मन मेरे सर्व को आधार गुर के चरण मन माहे त्याय गुर के चरण मन मह त्याय छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौं तिन कै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाम सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारया हर सिमर होए उधार जप

करणी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दो

रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

पास सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा।

सचा नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाई सच नाम गुणतास।

नानक गुरु शरणागति मरै न आवै जाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा।

जाए, नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए, साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार आस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुरडाखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए।

श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहज

क्यों थिर रह सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊं।

राम जप हो सुख होए बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुण चार साच मिल हो वर कामणी पिर मोही रंग लाए मन कन साच बिगस्या कीमत कहन ना जाए हर बार

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

तिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजै हौमै मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आप पछाणिए।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला मन मुख भुलै भुलाई फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोया।

मस्तक सच नीसान। बहुता जीवन मंगी है मुआ न लोड़ को, सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वसया सोए। नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए। ज्यों सुपने निस फुलिए जब लग निंद्रा होए, यूं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए। गुरमत होए विचारिए सुपना एह जग लोए।

पंखी बिरख सुहावड़े ऊट है चौ दिस जाए जेता ऊट है दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाय शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाय अमृत फल हर एक है आपे देखवाय मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाओ तिन्ना पास न बैसिय ओना कर ना गिराओ कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द ना नाओ।

तक समाए। हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर

सतगुर शरण सतगुर सच दिढ़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है गोहिथा शब्द पवजल तरण लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत खोई सतगुर शब्द सुनाया।

जियो हो सतगुर विट हो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लै रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दुए कर मस्तक धार जियो।

तुद विटहु कुरबान जियो। हर इठे नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

चले मूल गवाए जियो। तू वरना चिहना बाहरा, हर दिसह हाजर जाहरा। सुन सुन तुझे ध्यान दे, तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दई ऐसे बड़ी, गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी। हों

मात पिता सुत हेत, मात पिता सुत ने कनेरा माया मोह सबाई, संजोगी आया किरत कमाया करणी कार कराई। राम

करम धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै बणजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, बणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

या मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संजम जावे चोट न खावे ना तिस जमन मरना काल जाल जम जोह न सकै पाए भगत पै तरना।

खांडवर पांड हर सोभा होई, इहो दान ना रलै रलाया। होर मन मुख दाज जे रख दिखा लै, सो कूड़ अहंकार कछ पाजो। हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देव हो दान मैं दाजो। हर राम राम मेरे बाबुला, फिर मिल तन वेल वदंदी। हर जुग है जुगो जुग।

गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले संग सहाई हर नाम प्याई बिरथा कोई ना जाए मन चिंदे से ही फल पावह चरण कमल चित

अलाख अपेवे निहचल आसन पाया, तह जन्म न मरण न आवन जाना, संसार दुख मिटाया। चित्र गुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली।

सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाउ सर्ब सठापुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग।

अधर गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोय न दिसै डूजड़ो खुलड़े कपात नानक सतगुर भेट ते।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जारिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन बन जवा

आओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर न करना जाए महला तीजा। होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार, नानक बिनना मैं कोथिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर। पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का,

कमाए कूड़ कुसात कमाए गुर प्रसादी मानजने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे मनमुख आवे जाए पौड़ी हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी। जिस पर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

एक स्वान कह कर गावण, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अवसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया। पुंडर केस कुसम ते

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक दीन करहो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल विकसै जियो मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे हर हर दया करहो गुर मिल हो जन नानक गुर मिल रहसै जियो माज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सतसंगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो आओ सखी हर मेरे

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो। हर सतसंगत सतपुरख मिलाइए मिल सतसंगत हर नाम त्याइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर

दिखा लिया हो सतगुर विटहो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै पिन पिन ना रलई किसै दी रलाइया सब एका जोत वरतै पिन पिन ना रलई किसै दी रलाइया।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मनमुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरे बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनपौ पुरख दिखारया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया,

सोहाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सागुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग वर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम साधारी जियो। माज महला पंजवा, खोजत खोजत दर्शन चाहे, भांत भांत बन बन अवगाहे। निर्गुण

दयाल दमोदर गुरमुख पाइय होरत कितै न भांति जियो। निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूज है पैरा। गुरमुख हिरदय जाके हर हर सोई भगत एकांति जियो। अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा। गुरमुख नाम जपिय तित तरिय गत नानक विरली जाति जियो। माज महला पंजवां

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौं जीवा जियो। दुख पंजन निधान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहौ मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला।

तुम पुरख बिधाते, तुम समरथ सदा सुखदाते, सबको तुम ही ते बरसावे, अवसर करो हमारा पूरा जियो। दर्श

पात्रक तिखहारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारिक तीखीर अगावै ज्यों निर तन तन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारै दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै नाम निधान तिस है प्राप्त जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघना जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना।

साथ साथ हर गावै नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो माज महला पंजवां ओत पोत सेवक संगराता प्रभ प्रत पाले सेवक सुखदाता।

साहिब भावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किश ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जा हर जियो अपने ठाकुर जो पहराया बहुर न लेखा पुछ बलाया इस सेवक कै नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो माज महला पंजवा सब किश कर्म है बाहर नाही बाहर टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बिचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया।

जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौ बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए

भेटत संग साध संतन कै सदा जपौ दयाला जियो प्रभ अपना सास सास समारौ ए मत गुर प्रसाद मन धारा।

सो सच स्वामी रिजक सब सिखाओ जीए जियो नाम जपत सर्व सुख पाई सब पौ दिन सह हर हर त्याई।

हारे दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूर रहया मेहरबाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिनस तिस सदा त्याई जे खिन मह सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ

गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया जल थल महियल दै दिस वरसाया शांत पई बुझी सब तृष्णा आनंद।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माज महला पंजवां।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अन दिन नित जागी। बहा पकड़ तिस स्वामी मेलै, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय।

मनमुख पाप पजा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पुजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

आनदिन सार संभाल हर राखे गुरमुख सहज समावण्याम। तुद जेवड मैं होर ना कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कड़ भन्न सवार है।

मानमुख मुगध करह चतुराई नाता तोता छाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछोता बनिया मानमुख अंधे किशु ना सूझै मरण लिखाए आए नहीं बूझै मानमुख कर्म करे नहीं पाए।

पाए माया मन परम अवहै माया मोह सब शुद्ध गवाई कर अवगण पछोता बनया सतगुर मिले तां तत पाए हर का नाम मन वसाए शब्द मरै मन मा

सच विहाज है सच कमाव है सचो सच कमावणिया बिन राशि को वथ क्यों पाए मनमुख भूले लोक सभाए बिन

गुरमती आप बुझावणिया रहाओ। सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेव्या प्रगट होई। गुप्त प्रगट वरतै सब थाई, ज्योति जोत मिलावणिया।

नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे हो मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया।

अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिया शब्द सुहावै गुरमती मन सच्चो पावै सच्चो सच रव है दिन राती।

आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरणा खाणी बाणी सर्व निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापे पूरे गुर कै शब्द सियापे जिन पिया से ही तृप्ता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सहज

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन विद मिले।

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

राती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेवहु सत निरंजनो हर पुरख बिधाती तू आप सुजान है वट पुरख बिधाती।

पहला ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप न जलो अन्न पौन थिर ना कुई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक दिगर कुई एक तुई महला पहला प्रंदय ना ग्राह जर दरख्त आब आस कर दिहांद सुई एक तुई महला पहला नानक लिलार।

अर्थ है कहो नानक बिचार कारण करते वस है जिन कल रखी धार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सच्चा खसम कलान कमल विगसया खसम हूं पूरा पाए।

गौड़ी महला पहला। जातो जाए कहां ते आवे, कहे उपजे कहे जाए समावे। क्यों बांध्यो क्यों मुक्ति पावे, क्यों अविनाशी सहज समावे। नाम हृदय

मैं बनजारण राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा सहज शब्द विचार सहज सुभाए।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशल

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छाए रहाओ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सतसंगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूट त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्यावै।

चार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं याने धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा।

हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साथे तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

इस गढ़ में हर राम राय है, किस साधना पावे तीठा। हर दीन दयाल अनुग्रह किया, हर गुर सब दी चख डीठा। राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा रहाओ, हर अगम अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा। जिन गुर बचन सुखाने

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो, मन

भया निदाना रतन लाल जाका कछु ना मोल भरे भंडार अखूट अतोल खावह खर्च है रल मिल पाई तोट न आवै वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लयार लाए गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर।

मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे। मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सबर।

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहिथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुना।

पत पाए। गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जाने आ, गुरमुख भगत विरले मन माने आ, हों हों करत नहीं।

सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर भरम चुकावै निर्भौ कै कर ताड़ी लावै हौ हौ कर मरना क्या पावै पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै।

सी अलख अपेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, ना मोह भूले जम का दुख सहना। मैं तार नाम ज्यों राखो रहना,

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं ब्रह्मणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वस्या सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई।

नानक जन करिए सोलह अष्टपदियां ग्वारेरी गौड़ी किया गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों गाई को गोयली राख है कर सारा अहंस पाल है राख ले आत्म सुख तारा इत उतरा खो दीन दयाला तो शरणागत नदर निहाला रहा जह देखो तह रव रहे रख रख नहारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज कर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द न छूटी है देखो विचारा जे लख

रोता। आवत कौ जाता कहे जाते कौ आया, पर की कौ अपनी कहे अपनों नहीं पाया।

नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

मन ही मन सवारिया पै सहज सुभाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज घर वसिया।

तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हार पछाता तब इस नो नाही किशताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो जीत।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मह आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया।

सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

समाहे। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ही जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

धर्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा।

मंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो दर्श हर रायो ना

जियो गुर पुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री धर क्यों मिलहै तुझे उडीनियां कर करहै सेवा शीश चरणी।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तु

बहुत ग्रभवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

पौड़ी। एक है आप करावन हारा, आप है पाप पुन विस्थारा। या जुग जित जित आप है लायो, सो पायो जो आप दिवायो।

अंध कूप ते तिह कढ़हो जिह होवहो सो प्रसन्न न्या कै हाथ समरथ ते कारण करने जोग नानक तिह उस्तत कर।

होत सब जाकी, तज अभिमान छुट्टै तेरी बाकी। रण दरगाह तौसी जह पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह जाहे।

अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आखेर।

सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन दिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सो पहला प्रभ कै सिमरन सुफल फला।

समृदसना प्रभकौ सिमरहै से धनवंते प्रभकौ सिमरहै से पतवंते प्रभकौ सिमरहै से जन परवान प्रभकौ सिमरहै से पुरख प्रधान प्रभकौ सिमरहै से बेमुहताजे प्रभकौ सिमरहै से सर्व के राजे प्रभकौ सिमरहै से सुखवासी प्रभकौ सिमरहै सदा अभिन

प्रभु कौ सिमरहें से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन सुख बिहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरहें तिन निर्मल रीता।

अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीतना पहाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवे अत पहारी, हर को नाम खिनमा है उदाहरी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग

एक अनेक अगन नहीं बुझाए, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझाए, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन।

राष्ट्रपति रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।